0: क्या निशा, तू पूरा दिन सिद्धू सिद्धू सुनती रहती है।
1: हाँ तो फैन हूँ मैं उसकी।
2: मिलवा दे फिर तुम्हें सिद्धू भाई से, भाई जैसा अपने।
1: सच में यार, सच में मिलाओगे?
0: बस इतनी सी बात, चल चलें।